0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: हमी जन्मदात नहीं शिकारी हूँ शिकारी
2: पूरे डायलेक्ट मलाई चाहिए
3: भीएफएक्स सिनेमाज कुराही 10 नारायणपुर सौडीकुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र राम

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिंग टाइम। यदि तपाईं पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: प्रोडक्टहरू कोकोनट, सोकोनट, भिटा मिल्क, बटर फ्राइड, क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट।
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस, कोदोको डाइजेस्टिव र कुकिज का है नाइस।
0: अडगुरी।

0: प्रॉब्लम?
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

राम राम मैगर कविल आउक्र हार्दिक स्वागत बाद थारू भाषा के कार्यक्रम अपना का आवाज में पकपि मई बाटू अपना माझ में उपस्थित होस्याकल बाटू शालिकराम चौधरी उस्ताक महीना प्राविधिक रूप में सादेती अत्रबेला विष्णु अधिकारी पकपि आज हम उपस्थित होस्याकल बाटी हम अपना आवाज लेकन यह समय में बिहार का दिन हम दुई बजे का मध्यपश्चिम हाइलाइट्स पास करीब करीब हम तीन बजेसम रहना करती वह अनुरूप आज उपस्थित होस्याकल बाटी पकपि अपना का आवाज अपना को कार्यक्रम हो अपन प्रतिभा सुनिरा कार्यक्रम हो अपना को गीत गजल कविता ज्यासुकी प्रतिभा ज्यास रेडियो में सुनिरा लायक अपन प्रतिभा अपना क्र सुनाई सकने बाटी अगर कलाक अपना क्र शून्य बयासी पांच साठ आठ सौ चौन नंबर डायल करना आई पर्ना उठा अपना क्र ई नंबर डायल करना आईबी कलाक पक्के अपन प्रतिभा सुनाई सकने बाटी रमाइलो गपगाफी होने बा मैं बिल अपना क्र रेडियो मध्य पश्चिम इंटरनेट के पहुंच बाटी कला से www.radio.org लगइन के केना सुन फेस सकने बाटी उसमें हम पात्रो मोबाइल एप्लीकेशन में सीफे अपना उक्र रेडियो मध्य पश्चिम सुन सकने बाटी हमारा अपना का आवाज रेडियो मध्य पश्चिम की फेसबुक में सीफे हमारा लाइव करल बाटी अपना उक्र रेडियो मध्य पश्चिम नेपाली में टाइप कर दी कला से पकपी वहां से अपना उक्र भेटिने बाटी सुन सकने बाटी वहां से फे ध्यूर माध्यम अपना उक्र जहां से सहज उठा वहां से अपना उक्र सुनकर साथ दिखना आशा फिलियल बाटी ई कार्यक्रम में आकर अपन प्रतिभा सुनईना कार्यक्रम हो अपना उक्र अपन प्रतिभा धारा सीक्ने बाटी हमारा अपना उक्र को प्रतिभा कदर करती दांसी पुरस्कार के व्यवस्थापित कई दरखली अपना उक्र प्राप्त करने बाटी स्वर्गद्वारी वाटर सप्लायर्स के तर्फ से जहां जीवन चौधरी वहां के प्रतिनिधि हुई वहां का तर्फ से अपना उक्र एक कार्टून पानी की व्यवस्था कैदे रखला उसका सौ रूपये के रिचार्ज कार्ड फिर अपना उक्र प्राप्त करने बाटी अपना उक्र शून्य बयासी पांच साठ आठ सौ चौन डायल करती करी अपना माज में फोन के प्रतीक्षा में एक ठो सुगर गिदर छाटो अपना उक्र डायल करती करी शून्य बयासी पांच साठ आठ सौ चौन

0: मैले कविल हाँक्रो फेरसे स्वागत भा कार्यक्रम अपना आवाजमा हाम्रो सुगर गीत धेरैले कार्यक्रमको शुभारम्भमा पक्कै कार्यक्रम अपना आवाज के कार्यक्रम शुरू होस् याकलबा आइ सक्ने बाटी 082-558-854 नम्बर डायल गरिकन आफ्नो प्रतिभा सुनाइ सक्ने बाटी पक्कै आफ्नो थेरलक प्रतिभा आफ्नो थे उस्तमा सीमित निधाइकन आफ्नो सक्कु श्रोतामा आफ्नो सुनाइ सक्ने एक ठो प्लेटफर्म रेडियो मध्यपश्चिम दिहालबा आइ सक्ने बाटी 082-558-854 अत्र बेला के सँगै आमा सम्पर्कमा स्याकलबाट उहाँलाई स्वागत गर्दारी हेलो राम राम
1: हेलो राम राम बाबु सँगारी
0: राम राम कहाँ से के बोल्ली
1: मै घोराचार गोगली से राजा आतारे चौधरी बोलल बाटु सँगारी
0: का कृति बाटी अखि
1: ए काका ना घरक धन्दा कबु नै हो रे घरक धन्दा करना बैठना यदि दिए सुन्ना
0: गोगली मौसम कसिन बा
1: बद्री करल बा
0: बर्खा के समय बर्खा के मौसम बर्खा के समय आई लागल का हुना शुरू हो सकल बा मनसून के शुरू हुई टाका हुना यार फिर अंधार धुन बा यार खुराई के हाल खबर अब कब पानी पर्था अनि कार्यक्रम सुन्टी बाटी का सुनाइ इतिहास
1: गीत सुनाइ म सँगारी एक छ
0: ल सुरु गरे
1: लाल फुला टुरा गइन उजर फुला पार लाल फुला टुरा गइन उजर फुला पार सालिक बाटु चोखो माया दुसर घर साराल सालिक बाटु चोखो माया दोसर घर साराल सालिक बाटु दोसर माया चोको माया दोसर घर साल बर्खा लागल रिमे जिमे पानी परल झारी बर्खा लागल रिमे जिमे पानी परल झारी सालिक बाटु चोखो माया लागत जीवन भरी सालिक बाटु चोखो माया लागत जीवन भरी सालिक बाटो चोखो माया लागत जीवन भरी पानी परल रिमे जिमे दिखले सिर बाट पानी परल रिमे जिमे दिखले सिर बाट तिमले माया लाका लगायो बाटु लसुने बिरबाट तिमले माया लाको बाटु लसुने बिरबाट आओ सँगारी अत्र हो अब नै गर
0: सुगर गीत सुना दिली आफ्नो कला धन्यवाद ऐना दिनमा फस्तङको सम्झटी गर्वे एक बजे पास हाम्रो सुगर गीत बजिने बाटी के सम्झ
1: सर्वप्रथम आफन लाग्छ नै त सुनैबो अपने सुनै हो अपने सुना हो नै और जानिम के सुनै हो ठुन्या ठुन्यार गीत बजै हो मै न फेस सुनै हो मै फेस सुनम यहाँ बैठके पाछ ऐना सँगै आउँ पुरा सबको जान मजा मजा गीत सुनाके हँसै हो खुसी राख हो ओ कके मै छुटत हो राम राम
0: उहाँहरूलाई राधा आचार्य गुगली से समझल रही सुगर गीत सुना के गेली आप अपने पाला सुने भयासे 582-854 नंबर डायल के आई सकने बाटी पक्की हमारा प्रत्येक बिहार का दिन हमारा 2 बजे का मध्य पश्चिम हालास पास ऐना करती पक्की आप प्रतिभा द्वारा सीक्ने बाटी अत्र बेला के संग्रह हमारा संपर्क में सैकल बाट वहां स्वागत कर दाली हेलो राम राम
2: राम राम हजुर
0: राम राम कहाँ से के बोलिए कोराइसे टोपेन्द्र नेपाली ना
2: हजुर हजुर सर
0: आजकल अलिक विस्तार लेखा खासै फोन नि त
2: नाइँ यो कार्यक्रममा त भाग्नेले हो कि
0: हजुर
2: दुई चार चोट लिनु आसी कहाँ कहाँ नङ्ना यहाँ सिन आ भक्क नै यदि खोल्ली
0: हजुर
2: कार्यक्रम शुरू हरेल त रात हजार से पास लगिनु फोन लागि
0: ठिक भए कार्यक्रममा सम्झल बाटी फोन नि लागिलासे फेरि आफ्नो रेडियो मध्यपश्चिम होइन सुन्ती रहे
2: सुन्ती भागी थी उसमें लेख बेसिम फे लिए थे अब फिर आज कविता बतेना हो लेना बा का बाल चल संगे आप
0: हमारे तो सब कुछ ठीक बा अपने बरू सुनाई
2: ठिक बा डान्चे रुगा लाग्छ
0: डान्चे रुगा लाग्छ ल त कुछ नि ल
2: अरू कुछ नि हो काठमाडौँ धेरै लुगा चिसो लाग्छ रुगा लाग्छ सर
0: धन्यवाद कस्तो मौसममा कभी काल स्वास्थ्यमा तलमाथि हुन्छ गीता आजका सुनाइ त्यस
2: गीता सुनाइ
0: ल सुरु गरी
2: ल हजुर ल अब मिल्छ कि नै आफ्नो बर्खा लागल हाला जुवा गोरुको काँदैमा बर्खा लागल हाला जुवा गोरुको काँदैमा मेरो माया राखिदिनु है दुइटीको माझैमा साली हो बर्को छायाले निनै लागत भर नै लागत उनक मायाले साली हो बर्को छायाले निमै लागत भोग नै लागत उनक मायाले हजुर छोटो मिठो
0: छिटमिट गीत सुनादेली अपनाकलाई धन्यवाद बा ऐना दिनमा फेस्तङको सम्झटी कर्बी के सम्झ छ त्यो कि
2: सर्वप्रथम त आफन उपराजति बैसल बैसल मनया अब त मने फुनके रखला राधा आजरे बहिनी हुन् फे सम्झटु और साथीहरूको नाक आरआरे मगर मुस्कान जीसी गर्द सिंह सम्झेटी विदा होइटी राम राम
0: राम राम उहाँहरूलाई टोपेन्द्र नेपाली गराई रतनपुर से सम्झल रहेगै ल आप अपने पाला 082-5780-54 नम्बर डाइलके ऐना आइसक्ने बाटी पक्कै आफ्नो कुनै प्रतिभा नम्बर कतरकृति डान्से पुरस्कारको व्यवस्थापक विदर्कले आफ्नो 100 रुपियाँ रिचार्जकार प्राप्त गर्ने बाटी कलसे आफ्नो एक कार्टुन पानी प्राप्त गर्ने बाटी जीवन चौधरीको तर्फ से पक्कै आइसक्ने बाटी 082-5780-54 नम्बर डाइल कृति कर्दी अथवा सुग्गर गीत सुनी स्वीकारी

0: मै घरको बेलाहुँ ग्रह हाम्रा सुक्कर सजना सुना रखलाही पकपे बर्खापी लगभग सुरु हुना बेला हुइसकेल पकपे आफ्नो ग्रह बिया ढर्ना फेर तयारीमा हुबी अत्र बेला यो सँग राम सम्पर्कमा स्याकलबाट स्वागत गर्दारी हेलो राम राम
1: राम
0: राम राम कहाँ से के बोल्ले
1: ओ पुरानो सँग है कृष्ण चौधरीको नाम हुने
0: ए कृष्ण चौधरी ना
1: हजुर हजुर
0: अपनी कहर पक्कै ना
1: पक्कै पक्कै हो
0: कहर बाटी है कि
1: आखिर यहाँ क्याम्पस हाम्रो बाटो
0: हो नै पढाइल बाटी पढाइल बाटी
1: पढाए
0: पढाए
1: हजुर
0: ए टिचिङ गर्थ्यो अपने
1: हजुर हजुर
0: कुन स्कुलमा
1: पक्कै स्कुलमा कहाँ
0: ए पक्कै स्कुलमा नै
1: घर घर विद्यार्थी
0: हो नै
1: हजुर घर तिन चार सौ बाट
0: ए ट्युसन पढिसे ठिक अपने त कुछ काम नै छोड्न अहिले क्या कुछ कबु का गर्न कबु काफ गर्न न
1: हजुर जानवर तिना तरकारी परेन ऊ भेट्न जस कलवा खाके पढाइदैन
0: ल ठिक
1: घर घर पल्ल विद्यार्थी क्या बुझ्ल न
0: बसिन साहित्यिक बोल्ल से कहाँ चाहिँ थाहा पाइन आएर
1: घर पल्ल
0: ठिक बा काम व्यस्त भए आज कहाँ सुने
1: गीत
0: सुने
1: तुलसीपुर के बजार हमार भेटा होइना तुलसीपुर के बजार हमार भेटा होइना बिना भेटा होइला होइला माही छोरक जैना साली हो बरक झरी मार मैया चोखबा संसार भरी साली हो बरखक झरी मार मैया चोखबा संसार भरिमा मार मैया चोखबा संसार भरिमा हजुर
0: अत्र हो न
1: हजुर
0: ल सुगर गीत सुना दिली ऐना दिन फेस्ते सम्झौटी गर्बी आफ्नो सँग साथी नसम्झ सेठी
1: सम्झ तुई सम्झ त
0: धन्यवाद
1: मध्यपश्चिम अपने कागज सुन्ती बात सबको सँगले सम्झ चाहन्छु उहाँहरू थाहै छ हो बुढिया सम्झ अन्तिममा एक हत उहाँ कान्छी साली यहाँ जाति उही सम्झ ती बिदा हुन्छ राम राम छे
0: राम राम उहाँहरूलाई कृष्ण चौधरी पक्कु के सङ्ग्रह हुई त उहाँ सुगर गीत सुनाकी गैल आप आफ्नै आइसक्ने बाटी शून्य बयासी पाँच साठी आठ सय चौन नम्बर डायलको आइसक्ने बाटी अत्र बेला महिना प्राविधिक रूपमा शान्त कुमार बुढा मगर महिना सात त्यतिबाट सुगर सुगर गीत बास फेवा पक्क फेवा हाम्रो यिनीहरूसे बजिने बाटी आइसक्ने बाटी शून्य बयासी पाँच साठी आठ सय चौन नम्बर डायलकन अत्र बेला क्यू सँगै यहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आजकलबाट उहाँलाई स्वागत गर्दारी हेलो राम राम
1: धनिया त गैलो लैरवारे सेंदुरा छोरी गइयो सेंदुरा त डरबुसी रनिया सुबासले के सुइबु सेंदुरा त डरबुसी रनिया सुबासले के सुइबु धनिया त गैलाहेरवारे टिकुली छोरी गइयो टिकुली तरबुसी रनिया सुबासले के सुइबु टिकुली तरबुसी रनिया सुबासले के सुइबु धनिया त नठुनी छोरी गइयो नठुनी दादर बुसी रनिया सुबासले के सुइबु नठुनी दादर बुसी रनिया सुबासले के सुइबु हजुर राम राम
0: राम राम कहाँ से के बोल्ले
2: ददिराम चौधरी घोराई दुई से
0: ददिराम चौधरी रामपुर घोराई दुई से ना
2: हजुर हजुर
0: सुगर गीत फेरि सुनिदियो कमर भाटी हे
2: घोराई
0: भाटी ना
2: हजुर हजुर
0: और सबको ठीक है बा
2: ठीक बा धान धान की दिया धरना कार्यक्रम हुई थी बा
0: डर लागि सब
2: हजुर हजुर
0: उसका अखी कसिन मौसम रामपुर थे
2: रामपुर थे बद्री करल बा राखिन पानी परल अखी पर्ना आश पर्थी बा पानी चाहिँ नि परल
0: हरि पानी पर्ना आश छाप देखाइ टाका हुना
2: हजुर हजुर म पानी थियो पर परल किसान उठन रहा थी कोपनी सुखेर ला कोपनी मजा आएर लगी
0: ठीक बा कार्यक्रम सम्झल बाटी सुरुमा त सुनिले अरू कुछ बाकी आज सुनिन
2: म एक दुई टुक्रा गीत जोड
0: ल सुरु गरे
2: दिदीको जिन्दगीमा हाँसी खेली गरौँ दिदीको जिन्दगीमा हाँसी खेली गरौँ दिदीको जिन्दगीमा सँगै जीवन काटौँ हामी सँगै सँगै मरौँ सँगै जीवन काटौँ हामी सँगै सँगै मरौँ सँगै जीवन काटौँ हामी तिमी उता म त यता कति दिन रुने तिमी उता म त यता कति दिन रुने तिमी उता म त यता बाचा कसम गरौँ अब सजुनिए खुने बाचा कसम गरौँ अब सजुनिए खुने बाचा कसम गरौँ अब उर्ली आयो बैसा तिम्रो दुई दिनमा गइजाला उर्ली आयो बैसा तिम्रो दुई दिनमा गइजाला उर्ली आयो बैसा तिम्रो माया खौला माया लौला मायाले भइजाला माया खौला माया लौला मायाले भइजाला माया खौला माया लौला हजुर अत्रै खबर
0: सुगर गीत सुना दिली अस्तक आफ्ना प्रतिभा आहे निखर्ती जाओस् हाम्रो शुभकामना दिए चाहटी ऐना दिन सम्झटी गर्वी एक बजी पाछ हाम्रो गीत सुनिने भाटी आफ्ना हुनकला के सम्झटी
2: सर्वप्रथम त आफ्नै न अनि प्राविधिक मित्र नाथे सम्झटु अनि मैसी आएन मैसी पा छैन दिदीराम दिदी चिन्ना निचिन्ना सत्पुरै सम्झटी बिदाबितु राम राम
0: राम राम उहाँहरूलाई ददिराम चौधरी कोराई दुई सय सम्झल रह आफ्नो आफ्नो केपाला शून्य 82568854 नम्बर डायल के गाई सक्ने बाटी आफ्नो रेडियो मध्य पश्चिम आफ्नो अङ्क र इन्टरनेटको पहुँचमा बाटी कलस www.radioMP.org लगइनकै फेस हुन सक्ने बाटी उसको मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो मसे फे आफ्नो सुन सक्ने बाटी अत्र बेला क्यूसँग हाम्रो सम्पर्कमा आशाकलबाट हेलो राम राम
3: राम राम सर
0: राम राम कहाँ छ के बोल्ली
3: मैं घर आई तीन बेलवा से समझना चौधरी
0: बेलवा से समझना चौधरी ना
3: हजुर
0: समझना चौधरी के हाल खबर का बा
3: ठीक है बा का पर सर अपनी कनक से
0: नहीं यहाँ पे सब कुछ ठीक है बा अनि दिया हुआ धरना
3: दिया नहीं डर लगी है
0: नहीं डर लगी थी ना
3: हजुर
0: अब एक सुमला से पानी परी कला से धरना ही
3: हजुर
0: कार्यक्रम सुन्थे भाटी
3: सुन्थे त निरनाहु तर म यात्रा हजुर रुपियाँ खिएकी खेतमा गिराख्नु अब हिँड्नु परुचरा हिटनु हजुर रेडियो खोल्नु त रेडियो खोल्नु त ठिक आइट कार्यक्रम जस्तो फोन लगिनु
0: ठ्याक्क रेडियो खोल्यो ठ्याक्क अनि कार्यक्रममा फोन लगिले लाग्दिल न
3: हजुर
0: ल ठिक भए आज कहाँ सुनाइ इतिहास
3: आज एक ठो गीत सुनाइदिउँ सर
0: ल सुरु गरे
3: घर घरमा बोट माग्ना विकास कर बिकना घर घरमा बोट माग्ना विकास कर बिकना घर घरमा बोट माग्ना जिखे उपर गैला सेना युवन गोली चलैना जिखे उपर गैला सेना युवन गोली चलैना जिखे उपर गैला सेना दाउने के डगरी दाउने के डगरी माना गरी जमाइना दाउने के डगरी माना नेतन उर्ना पिले नम जनता दुख पैना नेतन उर्ना पिले नम
0: माझमा उपस्थित हुने बाटी।

सुगर गीत हेरेकै पक्कै ऐना हेरेर साली कपाल कोरेर आई लभ यू भन्दिउन मुखै परेर अस्त अस्त कतिर कतिर लह कलाकार सँगै हुनु कुरा अब हाम्रो कार्यक्रमको पुच्छार पुच्छार हो फे आस्याकल बाटी हाम्रा विधाको जय पर्नाउठा आज हमाला राधा आचार्य गुग्ली से सम्झल रही उसक टोपेन्द्र नेपाली कोराही रतनपुर से सम्झल रह उसक कृष्ण चौधरी पक्कु से सम्झल रह उसक ददिराम चौधरी रतन रामपुर से सम्झल रह उसक सम्झना चौधरी कोराही तीन बेलवा से सम्झल रह सुगर सुगर आपन प्रतिभा सुगर गीत सुनाके गेल अब हाम्रा विदा होके जय प्रथा विदा हुना से अगाडि एक जैन हाम्रो विजेता बनाई पर्ना हुइठा आज हाम्रो राधा आचार्य न विजेता बनाइला बाटी आफ्नो क्लातिहरु छुर बधाई बा राधा आचार्य आफ्नो एक हप्ता भित्र रेडियो मध्य पश्चिम के कार्यालयमा सम्पर्क गर्बी हुइठा त अत्रा बेलासम्म आफ्नो कार्यक्रम सुनकर साथ दिली सबको मैकर कविलाउला धीर धीर धन्यवाद बा उसक प्राविधिक रूपमा साथ देलास शान्त कुमार बुढामगर अपनाकला फे धीर धीर धन्यवाद दिति रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी कर्बी आजुकला मै विदाई टु शालिक राम चौधरी राम राम।

राम राम सन्जे 5 बजे थार भाषक मध्य पश्चिम खबर में शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान ओ विद्यालय समायोजन को कार्यक्रम जारी रलसे देश का 13,736 सामुदायिक विद्यालय में आही 100 से कम विद्यार्थी रलक पागिल बा। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय से सार्वजनिक करलक शैक्षिक सूचना 2082 में कुल सामुदायिक विद्यालय मध्य आधा से बढ़ी में 100 से कम विद्यार्थी देखिल बा। 100 से कम विद्यार्थी हुलक सामुदायिक विद्यालय का यी संख्या कुल सामुदायिक विद्यालय 27,010.50.86% हो। मंत्रालय का अनुसार 100 से

500 सम्म विद्यार्थी मूलक सामुदायिक विद्यालय 10,879 501,001,000 सम्म विद्यार्थी मूलक सामुदायिक विद्यालय 1,670 1,005,000 सम्म विद्यार्थी मूलक सामुदायिक विद्यालय 467 रहलबाट 1,501,000 सम्म विद्यार्थी मूलक सामुदायिक विद्यालय 140 ओ 2,000 से बढ़ी विद्यार्थी मूलक सामुदायिक विद्यालय का संख्या केवल 128 रहलबाट हाल मुलुक भर 35,951 कुल विद्यालय मध्ये 1,087 परम्परागत ओ 25,623 सामुदायिक विद्यालय रहलबाट ऊ मध्ये 8,941 संस्थागत बाट विद्यालयमा झाकन कुल 70,40,825 विद्यार्थी रहलबाट देशभरको सामुदायिक विद्यालय मध्ये 4,000 से बढी विद्यार्थी 9 सामुदायिक विद्यालय रहलबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय से देशभरको अस्पतालमा विपन्न असहाय ओ बेवारी से नागरिक हुकनकला निशुल्क उपचार सुनिश्चित गर लघु कार्यविधि लागू गरिराखल लक्षित वर्ध निशुल्क उपचार पोर्टल कार्यविधि 2083 अनुसार सरकारी निजी ओ सामुदायिक सबको अस्पताल से आफन कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा 10% विपन्न वर्गको बेरम्य हुकनकला अनिवार्य रूपमा छुट्टाई पर्ने बा यी कार्यविधि स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासे मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत स्वीकृत करल निशुल्क श्यामा भर्ना हुईलक बिरामशेष शैया चिकित्सकीय परामर्श शल्यक्रिया प्रयोगशाला परीक्षण ओ उपचारका लागि आवश्यक औषधि सहित अस्पतालमा उपलब्ध सबको स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाइनेबाट यी बिरामय हुनकला शुल्क तिर्कन उपचार लिन बिरामयसे कौनो फे भेदभाव गर पाजिनाहिट यी सुविधा पाइकला इच्छुक बेरमय हुनकसे विपन्न परिचय पत्र पालिकाको सिफारिस ओ प्रहरीक मुचुल्का पेश गर पर्ने वा आकस्मिक अवस्थामा सो घोषणा फारम भर्कन सेवा गृह सेक्जिने बाटक लस्य तर डिस्चार्ज हुनासे अगाडि आवश्यक कागजात बुझाइ पर्ने वा मन्त्रालयसे सञ्चालनमा अनलक फ्री हेल्थ पोर्टल मार्फत कुन अस्पतालमा कठ्याक निशुल्क शैया खाली बाटकन जानकारी सर्वसाधारणसे सजिलोसे पाइसे रोल्पामा आज बिहान एक ठो मिनी ट्रक दुर्घटना हुबेर एकजनाको घटनास्थलमा जो मृत्यु हुल बाक्लसे चालक सामान्य घाइते हुलबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक सुनिता सुनिल थापा नेपालीका अनुसार माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पातले स्थित बल्ले झिनुवा भित्र सड़क खण्डमा गुर्तिरलक मिनी ट्रक दुर्घटनामा पर्लक हो बल्ले खोलवासे आलु लेकन पोखरा जैती करलक रा 1:30:45 नम्बरको मिनी ट्रक गुर्तिरलक अवस्थामा अचानक सड़क भाषकन दुर्घटना हुलक हो ट्रक सड़क से झण्डै 30 मिटर तर खसल्दा दुर्घटनामा पर्कन गाड़ीमा सवार सल्यानका बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुदिला बोट निवासी 47 वर्षीय चन्द्र बहादुर बस्नेतका घटनास्थलमा जो मृत्यु हो रहल उसका दुर्घटनामा पर्कन मिनी ट्रक चालक दाङ बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 जौबारी बैसना 42 वर्षीय नुखिराम ओली घाइते हुलबाट उहाँको ढाडमा सामान्य चोट लगलको अवस्था सामान्य रहलबा चालक ओलिहन अखि प्रहरीसे नियन्त्रणमा लिएर राखल दुर्घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुइतिरलक प्रहरी जना राखल हो दाङमा यी वर्ष विभिन्न सामुदायिक विद्या वनसे करिब 5,00,000 क्युफिट काठ कटान होइना हो रहल वन सर्वतन प्रणालीमा आधारित दिगोपन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका 112 सामुदायिक वनसे 4,90,647.18 क्युफिट काठ कटान गर लागिलक हो डिभिजन वन कार्यालय घोराई अन्तर्गत 48 ठोक सामुदायिक वन 1,90,647.21 क्युफिट ओ डिभिजन वन कार्यालय देवखुरी अन्तर्गत 64 ठोक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसे 3,00,000 क्युफिट काठ कटान कैकन संकलन गर लागिलबा डिभिजन वन कार्यालय घोराईका सूचना अधिकारी भक्त बहादुर चौधरीसे वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय घोराई अन्तर्गत 48 सामुदायिक वनमासे 1,90,647 क्युफिट काठ ओ 472.50 काठी कटानका लागि अनुमति लेलक जानकारी दिएरखल चौधरीको अनुसार अनुमति लेलक वन समूहसे हालसम्म 93,889.38 क्युफिट काठ ओ 340.40 दाउरा कटानसँग संकलन गरिकन घाटगड्डी कर साइकलबाट डिभिजन वन कार्यालयसे कटान आदेश जारी गर्लक सामुदायिक वनमा पर्ना रूखोहन विभिन्न चरणमा अनुगमन
कैकन कटान कर योग्य ओ मापदण्ड पूरा हुईलक रूखन व्यवस्थापन कला कटान अनुमति देना कैराखल उल्ठा दाज थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसुन ज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्नेवाटी अखसक खबर मस्य समाचार कक्षक सबको संग्रहणसँग मैं शारीक राम चौधरी विदाहिटु रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।